0: सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीड़ित हुनुहुन्छ,
1: यस्तो समस्याको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आदेश सम्झनुहोस्।
0: हाम्रा सेवाहरू
1: ओपीडी सेवा,
0: विशेषज्ञ ओपीडी सेवा,
1: निशुल्क औषधि वितरण,
0: सशुल्क फार्मेसी सेवा,
1: फिजियोथेरापी सेवा,
0: अकुपंचर सेवा,
1: योग परामर्श सेवा,
0: क्रियाकल्प सेवा,
1: पूर्व कर्म पञ्चकर्म सेवा,
0: छाड़ सूत्र सेवा,
1: जलौका सेवा,
0: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू,
1: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म।
0: विस्तृत जानकारीका लागि
1: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैरीगाउँ काठमाडौँ, फोन नम्बर 01-4110-6096, 98514-2463।

0: Sim, Sakura. Preste atenção. New Radio Network. Aqui, Bihanaku, No Brasil.
1: यह समय किसान पाए प्रोडक्ट्स प्राली को हो
0: राष्ट्र को किसान
1: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस।

0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुंडू।

0: कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त करौ सुरक्षित भविष्य निर्माण करौ मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिनेर दिने करौ मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने करौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण में सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास करौ वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण करौ जीवन रक्षा करौ
1: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में

0: वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभा पहचान करी उजागर कर मदद करते न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसुपाती
1: संपर्क नंबर 9803623382 9803623387
2: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मातृदूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मातृदूतकोशी को समृद्धि मातृदूतकोशी गांवपालिका सोनपुंड को सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बिहार सांस 7:30 देखि 8 बजे समय सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज अनलाइन और सुनो एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन सकूने।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखलझुला को मिलन चुकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को दिक्तल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग करे भुगतानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा
3: छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग साझेदारी पर्यटन र धार्मिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा

0: Saiu rádio, estou no
1: Sonu FM 101.2 MHz.
2: Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
3: Sound check. Sonu FM studio time.
4: It's 8 p.m. रातको 8 बजे.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 9 PM रातको 9 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
4: प्रिय श्रोता अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्